0: 了解，目前呢，距离前方的这个位置大概还有 1.25 公里左右。这一段的距离呢，相比前方的这个抢通作业呢，可能会面临一些新的挑战。因为现在根据我们的了解，已经抵达了两个小瀑布的位置，他们会往下不断地冲出很多的水流，会给我们的这个道路填充和抢通带来新的挑战。所以呢，我们了解到前方的工作人员呢，也是设立了专门的这个计划，怎么样来防止水，怎么样来把这样的一个钢筋的石龙顺利地铺到位，这是接下来的一个工作的重点。那在直播的最后呢，要跟大家介绍的是，我们了解到从今天开始呢，整个中国安能的这个前方的救援人员呢，会连夜抢修，争取能够在最快的时间内把剩下的这一段路给打通，直通到我们这个现在出现情况的这个基隆口岸。目前呢，我们在现场了解的情况就是这些。
1: 好的，非常感谢赵雄从现场为我们发回的报道。除了道路抢通和救援情况之外呢，大家非常关注的就是这场造成了重大人员伤亡的泥石流灾害到底是如何发生的，泥石流灾害的源头又在哪里呢？我们通过一个短片来了解一下。
2: 30号早上，西藏吉隆826泥石流灾害新闻发布会在吉隆镇举行。中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员苏鹏程介绍了这次泥石流灾害发生的原因和特点。
3: 此次灾害源头发生在中国和尼泊尔剑河流域尼泊尔一侧，在海拔约5200米处断裂发生冰岩崩，高位快速坠落，冲刷山体形成巨型泥石流。
2: 据介绍，此次灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，灾害爆发突然，洪峰流量大，运行速度快，破坏性强，影响范围广，这也是青藏高原及周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征。根据灾害溯源，由于冰岩崩发生区域沟道狭长，海拔垂直落差大，使得冰岩崩蕴含的势能极大，在快速运动过程中，冰岩崩摩擦生热与冲撞产生大量热能，进而形成大量融水，二者混合在沟道内刮铲冰气物等松散物源，并快速向前演进。通过监测发现，此次冰岩崩从发生到冲击我国吉隆口岸仅约6到7分钟左右。与此同时，新闻发布会上还介绍了失联外籍人员的相关情况。经多轮全域摸排、点位清查及口岸逐人核查，目前吉隆县已无外籍游客滞留。目前排查失联外籍人员共计261人，包括尼泊尔104人、印度49人等，共23个国家。中方已向有关国家驻华使馆通报。此外，29号，尼泊尔专家在接受总台记者采访时表示，此次泥石流灾害的始发源头在尼泊尔一侧。
4: हामीले यो map हेर्यौं भने यो लिङ्दे river भनिन्छ, यो नेपाल र चाइनाको बोर्डरको river हो, यो खोला नेपाल र चाइनाको border जहाँ रातो देखाइरहेको छ, यो part नेपाल र northern side चाहिँ चाइना र यो चाहिँ नेपाल र चाइनाको लिरुङको हाम्रो border point हो, र यहाँ चाहिँयो इभेन्ट
5: यो तपाईँले लेखेको
4: यो हामीले यो नेपाल साइडको यो पोइन्ट चाहिँ लिरुङ ग्लेसियरभन्दा माथिको पार्ट हो र यो चाहिँ जहाँबाट रकफल सुरु गर्यो।
2: 目前尼泊尔一侧的灾区道路仍严重受阻，在从加德满都北上通往灾区的唯一主干道上，满载救援物资的车辆正紧急开往灾区。29号晚，尼泊尔警察拉金德拉表示，灾害发生时，他在距离尼中边境口岸18公里的地方，因灾情严重，前方的搜救工作进行得非常艰难。
6: 啊，该路车，有，你那一个就是包括这个奥斯泰，啊，你这八路的地上飞，挨着白的上飞，我是白的上就，就站的。गाडी जाने कुनै बाटै छैन, कुट छैन, अनि त्यो कुटीखेरै उद्धार गरौँ भने पनि त्यो हिलोको डलडलले त्यहाँ त्यहाँ जानै नसक्ने अवस्था छ। यो बर्सातको समयमा यो लगभग त्यस्तै नै हो, त्यो पानी यो छिमछिमे पानी परिरह्यो भने लामो समयसम्म परिरह्यो भने यो पहिरो जान